दरकार 50% बिजली को मुल्क की पैदावार से पूरा करना है। इससे भी सिर्फ कार्बन नुकता नजर के मुताबिक 100% हाइड्रोजन के इस्तेमाल में मुंतकली का हदफ है। एक फाल दिफा यूरोपियन के बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के खिलाफ एक चरहना इकदाम है। इन इकदाम के साथ तुर्की न सिर्फ एक स्टील प्रोड्यूसर बन रहा है बल्कि ग्रीन तवानाई को मुंतकली के लिए टेक्नोलॉजी का मरकज भी बन रहा है। आज हमें एक वाजह तस्वीर दिख रही है, माजिक आहनी पर्दे की जगह एक सब्ज तजारती दीवार ले रही है मगरब का लाइसेंस फेयर यानी छोड़ो करने दो दौर भी। स्टील की सनत में रियासत की हमायत याफ्ता एक बदमी से हम आहंगी से दौर को रास्ता दे रहा है। चीन की शुभ बाल दस्ती के बरखिलाफ अमरीका यूरोपियन अपने अपनी सनतों के तहफ़ के लिए वसी पैमाने पर सब्सिडी कोटे नाफज कर रहे हैं। तहम तहफ़ पसंदाना रद्दमल के माहौल में तुर्किया की पोजिशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। अपने तुर्किया सदी विजन के साथ हमारा मुल्क न सिर्फ एक पुल बनने की राह पर गामसन है बल्कि अपने तौर पर पैदावार फैसला साजी का मरकज बन रहा है। 2026 के लिए तयन करदा $2 बिलियन से ज्यादा का बरामदी हदफ और $10 बिलियन का कारोबार करने का विजन इस बात का मसल है कि हम स्टील मार्केट में तुर्किया का हिस्सा किस कदर लेती है। स्टील अकबहस पुलों फलकपोस इमारतों टैंकों के लिए हम माल नहीं बल्कि डिजिटल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन में मुल्क की स्ट्रेटेजिक मुजामत की अलामत बन चुका है। जबकि मगरब में 2 एकल कारपोरेशन लागत के तहत बोझ तले कुचल रही हैं, पैदावारी लाइनें बंद कर रही हैं। तुर्किया का मुहतारिक बसीरत का हामिल सरमाया अनातोलिया में सूरज वाले अयाम हाइड्रोजन को शामिल करके एक नए खेल की ताक बेल डाल रहा है। जैसे कि अमरीका मसनू जहानत की ताकत के बखिलाफ बेदार हो रहा है, यूरोप सस्त तब्दीली की महंगी हकीकत का सामना कर रहा है, तुर्किया स्ट्रेटेजी का आजादी का गढ़ बनने की तरफ साबित कदमी से रवानदवा है। दिफाई सनत से लेकर तवानाई की राहदारी तक, ग्रीन स्टील से लेकर अलग टेक्नोलॉजी तक हम वसी शोबों में तुर्किया सदी के कदमों की आहट सुन रहे हैं। मुस्तकबिल न सिर्फ उन लोगों का होगा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं बल्कि उन लोगों का भी होगा जो इस टेक्नोलॉजी को अपने वसायल अखलाकी इकदार के साथ मरबूत करते हैं। जब अनातोलिया की हिकमत जदीद दौर की इख्तरा के साथ यकजा हो जाएगी तो हमारा मुल्क आलमी मईशत में चमकता दमकता सितारा बनकर उभरेगा। सामिन के साथ हमारा आज का ये सिलसिला प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। आइंदा हफ्ते तवानाई के हवाले से किसी दूसरे मौजू पर बातचीत की जाएगी। तब तक के लिए अपने मेजबान इमरान अपल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जुग्राफियाई मईशत।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जामिर ने कहा है कि कसीर महाजी तनाज़ियात की वजह से इसराइली फौज को फौरी तौर पर मजीद फौजियों की ज़रूरत है। कनेसेट कमेटी के सामने बात करते हुए जामिर ने कहा कि फौज की तवज्जो गजा, लुबनान और ईरान में जारी ऑपरेशंस पर है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इंतहाई रासिखुल अकीदा यहूदियों की फौज में भर्ती के मामले पर कशीदगी बढ़ रही है। बाज महाजों पर सरकारी जंग के बावजूद पूरे खत्ते में इसराइली मजालिम और खिलाफ वर्जियां जारी हैं। थाईलैंड के बाअसर साबिक वजीर आजम थाकसिन शिनावित्रा को तकरीबन 8 माह कैद के बाद रिहा कर दिया गया है। 76 साल अरबपति ने 25 साल तक थाई सियासत को दोबारा तश्कील दिया और उस पर गलबा हासिल किया, लेकिन उनका असर हाल ही में उनके जेल जाने और इस साल के शुरू में उनकी फ्यो थाई पार्टी की बदतरीन इंतखाबी कारकर्दगी के बाद कम हो गया है। सैकड़ों हिमायती जो पीर की सुबह से बैंकॉक की क्लोनिंग प्रेम सेंट्रल जेल के बाहर जमा थे, उन्होंने रिहाई पर उनका इस्तकबाल करते हुए नारे लगा दिए। हालांकि वो अपनी सजा का तकरीबन 2/3 हिस्सा गुजार चुके थे और फिर जमानत पर रिहा हुए। 15 साल की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद थाकसिन 2023 में थाईलैंड वापस आए और 2001 से 2006 तक वजीर आजम के तौर पर मफादात के टकराव और ताकत के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में 8 साल कैद की सजा का सामना भी किया। बाद में थाई शाह ने उन्हें 1 साल मुद्दत में तब्दील कर दिया। गुज़श्ता साल सितंबर में अदालत उज़्मा ने फैसला दिया कि थाकसिन को यह सज़ा जेल में गुजारनी होगी और नतीजा अखज़ किया कि उन्होंने और उनके डॉक्टरों ने गैर ज़रूरी सर्जरियों के ज़रिए जानबूझकर उनके हस्पताल में क़याम को बढ़ा

क्रिस्टचर्च सेंट किरकोर के लिए वक्फ जो आर्मेनियाई लोगों के लिए ईसाइत देकर आया था। ये यीशु की पैदाइश से लेकर उनकी मौत तक के अमल को जाहिर करने वाले फ्रेस्कोस की वजह से इलस्ट्रेटेड चर्च के नाम से भी जाना जाता है। चर्च अपने गुंबद के डिज़ाइन और उम्दा कारीगरी से भी तवज्जो मबजूल करवाता है। राहिबा या कंवारियों की खानगाह जो शहर के बाहर बनाई गई है, एक और अच्छी तरह से महफूज गिरजाघरों में से एक है और इसकी शक्ल आधी बंद छतरी से मिलती जुलती है। आनी एक बहुत ही ख़ास जगह थी जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तें मिलती हैं। ईसाइत से पहले यहाँ आबाद होने वाले फ़ारसियों ने अपने अकीदे का मुक़दस मकाम भी बनाया था। ये ढांचे जिन्हें आतिशकदा के नाम से जाना जाता है, मुक़दस आग के लिए तामीर किया गया था, जिसे ज़रतुश्ती अकीदे के मुताबिक महफूज रखा जाना चाहिए और इसे कभी नहीं बुझाया जाना चाहिए। आनी में आतिशकदे को आज शहर का पहला मंदिर होने का एज़ाज़ भी हासिल है। सलजुक महल और कारवान सराय आनी में अजीम सलजुकी दौर के अहम कामों में से एक हैं। आनी के मजहबी ढांचे से पता चलता है कि यह शहर एक अहम मजहबी मरकज़ था जो काफिर अकायद से लेकर तौहीदी मजाहिब तक उस्तवार करता था। आनी तंतुलिया का मुतासिर कुन शहर जहाँ सकाफ़तें और मजाहिब मिलते हैं, जहाँ आबादकारों ने मुमताज़ निशाना छोड़े हैं और जिसने बहुत कुछ देखा है, आज यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वरसे की फहरिस्त में भी शामिल है। आनी को मंगोल हमले के दौर से भी अपना हिस्सा मिलता है, जिसने अनातोलिया को तबाह कर दिया था। कभी शानदार शहर आहिस्ता आहिस्ता एक गांव में बदल जाता है और फिर इसे तर्क कर दिया जाता है। जो इमारतें सदियों पहले बच गई थीं, वो अफसोस के साथ देखती हैं जो सालों ने छीन ली हैं। सामिन, आज हमने इस प्रोग्राम में आनी आसार कदीमा के मकाम के बारे में बात की। नस्ली खान देरमैन जी ओलू के कलम से तहरीर करता ये प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।